0: मैं देखता हूँ दादी, आप मेरे साथ आइए।
1: Ladies and gentlemen, oh, forget it.